सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हरे अगम माया गामय अपारा सब त्यामय तो तुझी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या वो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू काट काट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना

तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुणी आख बखाना। जो सेवै तुद जी, जन नानक तन कुरबाना। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत पए जिन हर थाया जी, तिन तूटी जमकी फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हरि अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तापें जपें बेअंता। तेरे अनेक पढ़ें बहु समर्त शास्त्र जी, कर करिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता।

तदिया पे सरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जान होई। आसा महला चौथा। तू करता चार मैंडा साई, जो तो भावे सोई थी सी, जो तू दे सोई हूं पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा।

जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़या संजोगी मेल। जिसना तू जाना सोई जन जाने, हर गुण साध ही आख वखाण। जिन हर से व्यतन सुख पाया, सहज ही हर नाम समाया।

मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारु। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया।

आनंद सुनो वट पागियो, सगल मनोरथ पूरे पार, ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पै सरस पूरे गुरते जानी।

0: धारू ए वास्तवत जीने जाई नित नित राखोर तारू तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारू। श्लोक महला पंजवां। तेरा कीता जतो नहीं मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह हरिया। तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों, बैनीपाल परिवार वालों बच्चों की ते परिवार की चढ़दी कला नूं मुख रखदिआं श्री सुखमणी साहब जी के पाठ आरंभ होने लगे ने। आप संगतान ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित बैठ के पावन बाणी के पाठ श्रवण करने की कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। गौड़ी सुखमणी महला पंजवां। श्लोक एको ओंकार सत गुर प्रसाद। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सात गुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी सिमरों समर समर सुख पावों, कल कलेश तन माय मिटावों। सिमरों जस विसंपर के नाम जब ते अगण ते अनेक, वेद पुराण समर सोधा कर कीने राम नाम के आखिर। किन का एक जस जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। कांखी एक दृष तुहारो, नानक गुण संग मैं उधारो। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम न सै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ कै सिमरन अंत दिन जागे। प्रभ कै सिमरन पौ न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साधु कै संग, सरबन दान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान त्यान तत् बोध। प्रभ कै सिमरन जब तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन से दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ का सिमरन उदरे ऊंचा। प्रभ का सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ का सिमरन सबके सुजे। प्रभ का सिमरन ना ही जम त्रासा, प्रभ का सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम मृदमाय समाये। प्रभ जी बसै साधुकी रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ कौ सिमरै से तनवंते, प्रभ कौ सिमरै से पतवंते। प्रभ कौ सिमरै से जन प्रवान, प्रभ कौ सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ कौ सिमरै से बेमोता जी, प्रभ कौ सिमरै से सर्व के राजे। प्रभ कौ सिमरै से सुखवासी, प्रभ कौ सिमरै सदा बिनाशी। सिमरन ते लागे जने आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ कौ सिमरै से परे उपकारी, प्रभ कौ सिमरै तन सत बलिहारी। प्रभ कौ सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ कौ सिमरै तन सुख बिहावे। प्रभ कौ सिमरै तन आत्म जीता, प्रभ कौ सिमरै तन निर्मल रीता। प्रभ कौ सिमरै तन आनंद कनेरे, प्रभ कौ सिमरै बसे हर नेरे। संत कृपा ते अंदन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी। प्रभ कै सिमरन ने चले आसन, प्रभ कै सिमरन कमल गगासन। प्रभु का सिमरन अनहत चुनकार सुख प्रभु सिमरन कांत न पार सिमर से जन जन को परम भया नानक तन जन शरण पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाय हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन पै सहजति दाते हर सिमरन ने चौकुंट जाते हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन क्यों सगलिया कारा हर सिमरन में आम निरंकारा कर कृपा आज से आप बुझाया नान गुरमुख हर सिमरन तन पाया श्लोक दीन दर दुख पंजना कण कणनाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुमित न पाई मनुहा नाम तेरे संग सहाय जय माँ प्याण दूध जम दल तय केवल नाम संग तेरे चल जय मुश्किल हो वे अत पारी हर को नाम किन माय उधारी अनेक पुना चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पापर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत तो सुखिया लाख करोरी बांधना परे हर का नाम जपत निस्तरे अनेक माया रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जपते आघावे जे मार के जाते केला ते हर नाम संगोत सुहेला ऐसा नाम मनस दाते आइये नानक गुरमुख परम गत पाइये छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जबत ते पार पराहे अनक बिगन जय आए संहार हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन जन्म मर जाम नाम जबत पावे विश्राम हाँ मैला मल कबू न तो वह हर का नाम कोट बाप खो वह ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाये साध के संग जे मार के गन जाए न कोसा हर का नाम मुहा संग तोसा जे पैंडे महान गुबारा हर का नाम संग गुजियारा जा पंत तेरा को ना सुजानो हर का नाम ते नाल पछानो जय महा प्याण तब तब काम ते हर के नाम की तुम यो पर शाम जहां तिरखा मंत ज्या करके ते नानक हर हरे अमृत बरख भगत जना की बरतर नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत जन रात हर हरे औखत साध कमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नोदान मान तन रंग रते रंगे के नानक जन के ब्रत विवे के हर का नाम जन को मुगत जुगत हर के नाम जन को त्रवत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम ज्योत कपर न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कशनाय वियोग जन दाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के मालक जीना हर तन जन को वा प्रभु दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जने वर न जाने ओत पोत जन हर सराते शोन समाध नाम हर समाते आठ पैर जन हर हर जपे हर का भगत प्रकट नहीं छपे हर के भगत मुक्त बो करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम ते हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनंदर दुख लथा नाम की महिमा संतर दिवस है संत प्रताप तुरत सब नस है संत का संग वड पागी पाये संत की सेवा नाम ते आये नाम तुल का शवर न होए नान गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहुत शास्त्र बहुत स्मृति पेके सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब त्यान कट शास्त्र स्मृत वख्यान जोग अभ्यास कर्म तर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिर अनेक प्रकार किए भोजतना पुन दान हो मैं बोरतना सिर कटाय हो मैं कर राति व्रत नेम करे बो पांति नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जप एक बार नौ खंड पृथ में फिर चर जीव महा उदास तपी सरथी वह अगन माए हो मत प्राण कन कशव है वरपू मदान न्योली कर्म करे बो वासन जैन मार्ग संजमे साधन निमक निमक का शरीर कटावे तो भी होमे मैल न जावे हर के नाम समसर कश नाय नान गुरमुख नाम जपत गत पाए मान कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे शोज करे दिन सिर रात मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिख्या डरे जल तो वे बहु दे अनेत शुद्ध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उतरे पतित बहु मूच बहुत से अणब जमका बहु बेअपे अनक जतन कर तशन्ना त्रापे। भेख अनेक वगनी बुझै कोट पाव दरगा ने सिजै छूट सनाही उपयाल मोह बेअपे माया जाल अवर करतूत सगली जमडान गोविंद भजन मन दिल नहीं मान। हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपने शोभा लोरे सत संग
1: होमे शोरे जे को जन्म मरण ते डरे साजना की शरणी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानकता के बल बल जासा सगल पुरख मह पुरख प्रधान सासंग जा का मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हो सगल किरीना हर हर नाम दिन कर कर चीना मने अपने ते पुरा मिटाना पेखे सगल से साजना सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पाप पुन्य लेपा निर्धन को तन तेरो नाओ निथावे को नाओ तेरा थाओ निमाने को प्रभु तेरो मान सगल कटा को देवो दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गद में जानो आपे अपन सांगा प्रभ राते तुमरी उस तो तुम दे होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म से धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सत्संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल वाणी में अमृत वाणी हर को जसन रसन बखानी सगल थान त्यो उत्तम दान नानक जे कड़ बसे हर नाम श्लोक निर्गुण यार आनया सो प्रभु सदा संभाल जिनकी याद चीत रख नानक निभी नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दिस्तानी जंतु सास वार सिगारिया गर्भ अग्न में जिने वारिया बार बसा तुझे प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साग सैन मुख प्याओ बैठ को दैन ए निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लयो तो नानक सी जै। जे प्रसाद उपर सुख बसै सोत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पन पाव के अमुला जे प्रसाद पोगे सब रसा सगल समग्री संसार बसा जिन्हें हस पाव कर नित रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मुड़े अंध बे अपै नानक काल ले प्रभ अपै आदंत जो रखनहार तिस प्रीत न कर गवार जाकी सेवा नवनित पावे तासो मूढ़ा मन नहीं लावै जो ठाकर सर सदा हजूर है ताको अंधा जानत दूर है जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगद जान सदा सदा एह पूलन हार नानक राखन हार पार रतन त्याग कौडी संग रचै सा छोर झूठ संग मचै जो शरणा सो अस्थिर कर मान है जो अन सो दूर परान है छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरै चंदन ले पोतारे धोए गर्द प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतत बिकराल नानक कार लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोग पिछारा करे दिन रात बार पेखंतर मन माया शब्द सुनाही कज करे छपाया बार ज्ञान त्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुमान अंतरगन बार तन स्वा गल पाथर कैसे तरे यथा जाके अंतर बसे प्रभाप नानक ते जन सहज समात सुने अंधा कैसे मार्ग पावे कर गहलो और निभावे कहाँ बुजारत बूझे डोरा निष्कहिए तो समझे पोरा कहाँ विष्ण पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुरपंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तूआ उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुहावे न चीत जो बराई ता सुप्रीत बलुआ के गृह भीतर बसे अनगेल माया रंग रसे जड़गर माने मने प्रतीत काल ना आवे मूढ़े चीत बैर बोध काम क्रोध मो झूठ विकार मां लोभ तुरो याहू जुगत बयाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकर तू पैर दास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गद में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कह लागे आन सुहाए नानक कहू न सी जई बिन नावे पथ जाए अशबदी दस वस्तु लै पाशे पावे एक वस्त कारण बखोड़ गवावे एक बीना दे दस भी हिरले तो मूढ़ा कहो का करे जिष्टा कर स्यो ना ही चारा ताको कीजे साध नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जय जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत सापनी दे रास खात पीत बरते अन उलास अपनी मान के शुभा और साले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत अब ही खोवे और उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्त से आज्ञा रख है प्रभु की आज्ञा मान मत है उससे चौगुण करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक पाद माया के हेत सर पर हो जान नेत बिरख की छाया सो रंग लावै ओ बिन से ओ मन पछतावै ज्योति से सोचा लुणहार लपट रहे होता है अंधार बटाऊ से जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानका भले लाई मिथ्या तन धन कुटम सवाया मिथ्या हुमे ममता माया मिथ्या राज मन तन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रस हस्ती बस्तरा मिथ्या रंग रंग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मो अवमान मिथ्या आपस ऊपर कर दुगमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सुन पर निंदा सुने मिथ्या हस पर दर्भ खोहि रहे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बेकार कुतावै मिथ्या मन पर लोह लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास नेत बकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम ले मृति शक्त की आर जा साच बिना कह हो बत सुचा मृता नाम बिना तन अंध मुख आवता के दुर्गंध बिन सिमरन नैन बिरसा बिहाये मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बृथे सब काम जो कृपन के निरार दाम तन तन ते जन जे कट बस्यो नाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कही अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेश आव ना करै आवत जावत जन मैं मरै जिसके अंतर बसे निंकार तिसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पर आता करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपै मानै आपे आप आप करत नवेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाप शान सगल ते रहत सब कह जाने आत्म की रहत ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਯਾ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹਰੀ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ। ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਆਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਦੇ ਵਸ਼ਵਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤਿਸ ਠਾਕਰ ਕੋ ਰਗ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧ ਤਨ ਲਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਣਾ, ਬਸਨਾ ਆਠ ਪੈਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਧਿਆਵਨ ਯੋਗ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ

सरणी प्रवटाग्र प्रवता कै जे प्रसाद तुझको न पहुँचाए मन सा सा सिमरो प्रभु चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद भूखन पैरी जै मन तिर सिमरत क्यों आलस की जै जे प्रसाद अस हस्त सवारी मन तिर पाप को कबू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना रा प्रोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंध बनाई उठ बैसा तिसे ते आई तिसे ते आए जो एक लखै इहां उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आर पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तो आचार बिहारी तिस पव को सा सा चितारी जे प्रसाद रसुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा रूप जे प्रसाद रिनी की जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद पेखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभु त्याग अवर कद लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार जे प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड रुता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तेरे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रकाश प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मल उत्तम होए सर्वदान प्रभु तेरी मया आपू कछु न किनु लया जित जित लाओ तित लगे हरनाथ नानक इनकै कछु नाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे समुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की आचार्य कथा अश्वरी साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिठे अभिमान साध के संग प्रगट सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभु नेरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रमय समानी साध के संग गोचर मिलाए साध के संग सदा पर फुलै साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कदू तावै साध संग अस्तित मन पावै साध के संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु के संग महापनीत साध संग के सोनी बैर साध के संग नवींगा पैर साध के संग नहीं को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं उताप साध के संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कभूं तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गोचर लह साधु के संग जार सह साध के संग बसे तन उच्चै साधु के संग महल पहुँचै साध के संग जड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पर नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है साधु के संग सो तन पावै जिस तन ते सब को बरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साध के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सबल जनम साध के संग नहीं कई काल दर्शन पेट तो होत निहाल

जन कोए कर कृपा अंतर उर तार है, पस प्रेत मुक्त पाथर को तार है। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू युक्त कृते न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम दिन नदरी आया, दास संतन पाए तन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगाह परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे। सगल संगात मोहदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म ही तावे, जीवन मुख सो कहावे। तैसा हर्क तैसा उसोग, सदा अनंत नहीं बेयोग। तैसा सुन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेकाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताय साई जुगत, नानक ओपुर कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित घर राखे तैसा दिन नाओ। आपे करण करावन जोग, प्रभावे सोई फन होग। पसरो आप होए नंतरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग।

श्लोक उस तत् करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभु रची बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार बिहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तारा है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम ते आवे है नानक करते का अंत न पावे है। कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट भिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्व को हिर है कई कोट पर दुख न कर है। कई कोट माया श्रमाए कई कोट परदेश परमाए जित जित लावो तित तित लगना नाने करते की जाने करता रचना। कई कोट सृजति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट शशिर सूर निखत्तर कई कोट देव दान इंद्र सिर छतर सगल समग्री अपने सू तारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है। कई कोट राज ताम साधक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र कई कोट की रत्न संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेहर सुवर्ण जीवे कई कोट जकिन पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सब ते नेरे सब ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर। कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरै कई कोट भोजोनी फिरै कई कोट बैठती खाए कई कोट काले तक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तै तै राख नानक सब कृपा कै हाथ है। कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिल निबलागी कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म में पर ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तिनको मिलियो प्रभु विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो परेशान नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जोत कीनो विस्तार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट कीने बपात प्रभ ते हुए प्रमें सुमात ताका यंत्र जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो आत्म प्रकाश कई कोट तत् के बेटे सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय ससर ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सह समावे अपने जन को साथ साथ संवारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारण जल थल मही हल सोए। अश्वरी करण करावन करने जोग जोग सुभावे सोई होग किन में थापो तापन हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्म तार अतार रहावै हुक्म उपजे हुक्म समावै हुक्म उच नीच व्यवहार हुक्म अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रिया समाई प्रभ पावै मन उगत पावै प्रभ पावै तां पात्र त्रावै प्रभ पावै बिन सास्ते राखै प्रभ पावै तां हर गुण भाखै प्रभ पावे तां पद उदारे आप करे अपन विचारै दुआ श्रेयां का आप स्वामी खेले बिकसे अंतर जामी
जो पावे सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै। कहो मनुख ते क्या होए आवै, जो दिस पावे सो ही करावै। इसके हाथ होए तां सब किछ ले, जो दिस पावे सो ही करे। अनजान दे बिखिया में रचै, जे जानते अपने आप बचै। पर मैं पूला दर सतावै, निमख मैं चार कुंट फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन ना मिले। खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज। जाका दृष्ट कछु ना आवै, तिस तत्काल दर्शक प्रगटावै। जाको अपने करे बख्शीस, ता काले खाना गणे जगदीश। जियो पिंड सब तिसकी रास, कट कर पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो दिस भाव सोई फुन थियो। कबू ऊच नीच में बसै, कबू सोग हर खरंग हसै। कबू निंद चिंद प्योहार, कबू ऊब आकाश प्याल। कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक आ मिलावन हार। कबू नृत्य करे बपात, कबू सोए रहे दिन रात। कबू महाक्रोध विकराल, कबू सर होत रवाल। कबू होए बह बड़ राजा, कबू भिखारी नीस का साजा। कबू अपकीर्त में आवै, कबू भला भला कहावै। ज्यो प्रभु राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे विज्ञान, कबू मोहन तारी लावे ध्यान। कबू तट तीर्थ इसनान, कबू से साधक मोह ज्ञान। कबू कीट हस पतंग होए जिया, अनक जोन परमे परमिया। नाना रूप जो सुहागी दिखावै, जो प्रभु पावै तिवै नचावै। जो दिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए। कबू साध संगत ये पावे, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जल

0: श्लोक सुखी बसे मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतराज अवमान सो नरक पाती हो वत सोवान जो जाने मैं जो बिनवंत सो हो सुबिष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे भोजोन परमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे। धनवंता होय कर गिरभावे त्रिन समान कर संग न जावे। बहु लश्कर मानुख उपर करे आस पर पीतरता का होए विनाश। सब ते आप जने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत। किसे न बले आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुवारी। गुरु प्रसाद जाका मेरे अवमान सो जन नानक दरगाह परवान। कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिर तारे। अनक तपस्या करे हंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगाह को कैसे गावै। आपस को जो पला कहावै तिसे पला ही निकट न आवै। सर्व की रेन जाका मन होए को नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए। जाबे जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग ने चल नाही चीत। जब लग मोह मग्न संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा दे बंधन टूटा है गुर प्रसाद नानक हो छुटा है। सहस कटे लाको उठतावे त्रिपत नयावे माया पाशे पावे। अनक भोग बेखे आके करै नहीं तिपतावे खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब का जाय। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए। करन करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। करन करावन करने हार इसके हाथ का विचार। जैसी दृष्टि करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए। जो शकीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू के संग। बुझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाए नानक शरीर समाए। आप उपदेशे समझे आप आपे रजिया सबके साथ। आपकी नो आपन विस्तार सब किसी उसका हो करने हार। उसते भिन्न कहो किसी होए थान थन अंतर एक कैसो होए। अपने जल तप करने हार कौत करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माए नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किन्ने बखयानी। सच सच सच सब कीना कोट मदे किन्ने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी काट काट सुनी सरवण बखयानी। पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपे नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत के दुखन आरजा घटै संत के दुखन जमते नहीं छुटै। संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा देहीन। संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग ਨਿੰਦਕ ਪੀ ਤਰੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨ ਕਾਗਜੋਂ ਲਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤਿਸਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਚਾਏ, ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਇਓ ਵੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਾਤ ਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿੰਟਕ ਨ ਪਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਾਂ ਹਥਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰਦੀਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲਾਗੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾਂਹੰਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮ ਹੈ ਮਰੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾਹੀ ਠਾਓ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਦ ਬੀਜ ਤੇ ਟੁੱਟੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਜੜ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਥੋਥਾ, ਜੋ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਲੋਥਾ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਆਪਣ ਬੀਜਾ ਪੇ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਉਬਾਰ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਦੁਖੀ ਇਉਂ ਮਿਲ ਲਾਏ, ਜੋ ਜਲ ਬਿਉਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ, ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਇੰਧਨ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁਟੇ ਅਕੇਲਾ, ਜਿਉਂ ਬਾੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਹਿੰ ਦੁਹੇਲਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ, ਕਿਰਤ ਨਿੰਦ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਥਿਆ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਿਵਾਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਆਸਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਠ ਚਲੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਸ ਨਾ ਤਿਸ਼ਟੈ ਕੋਏ, ਜੈਸਾ ਭਾਵੇ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਸਭ ਕੱਟ ਤਿਸ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ, ਸਭ ਕਿਛ ਵਰਤੇ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ, ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋਥੀਆ, ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਅਬ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੇ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ, ਬੜਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ। ਸਲੋਕ ਤਜੋ ਸਿਆਨਬ ਸੁਰ ਜਨੋ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨੋ ਕੀ ਟਿਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕੇ ਦੀਏ ਰਹੇ ਅਕਾਏ, ਬਹੁਰ ਨ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਤ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਾਖੰਡ ਪਰੋਏ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਇਨਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਹਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ, ਨੈਣੋ ਪੇਗ ਠਾਕਰ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਸੰਗ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿੱਠੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ, ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ, ਬੜਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। राम नाम जो करे विचार, सेतन मंद कनी संसार, मंदन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, इतु दुखी हो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपने आप सुझे, तिसकी जानो तिस ना बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, अनदन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ में सोई निर्वाण, एक ऊपर जय जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर पर मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो से को किसते डराए, जैसा सा तैसा दृष्टा, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब बूजिया, जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल, न किस जन्मे न किस मरे, अपन चलता आप ही करे, आवन जान दिष्ट अनदिष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सिष्ट, आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रही थाप थाप, अविनाशी नाही किसी खंड, तारन तार रहे हो ब्रह्मांड, अलख पे पुरख परताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभु जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरे तिन मंत, प्रभु के सेवक सगल उदारन, प्रभु के सेवक दुख विसारन, आपे मेल ले कृपाल, गुर का शब्द जपे निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिनु कृपा करे बड़ भागै, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख उत्तम करमान, जो कुछ करे सो प्रभु के रंग, सदा सदा बसे हर संग, सह सुभाय होवे सो होए, करणे हार पछाणे सोए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा सिस्टाना, जिस ते तिस मैं समाए, ओए सुख निदान उन्हु बन आए, आपस को अब दीनो मान, नानक प्रभु जन एको जान, श्लोक सर्व कला परपूर प्रभ बिरथा जानन हार,
1: जा कै सिमरन उदरिय नानक तिस बलिहार, अष्टपदी टूटी गंडन हार गोपाल, सर्व जिया पे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अबनासी प्रभ आपे आप, अपन किया कछु ना होए, जे सो प्राणी लो चै कोए, तिस बिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जपे कर नाम, रूपवंतो नाही मोह, प्रभ की जोत सगल कट सो है, तनमंता होए क्या को गर्भ, जां सब गिज तिसका दिया दरबै, अत सुरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहता वै, जे को होए बैदा तार, तिस देन हार जाने गवार, जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग, नानक सोजन सदा रोग, ज्यों मंदर को था मैं थमन, त्यों गुर का शब्द मन अस्थमन, जो पाखंड नाव चढ़तर है, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन हुए बिगास, ज्यो महाउद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बाछो तूर, नानक की अरलो चापूर, मन मूरख काहे बिल लाइये, पूरब लिखे का लिखिया पाइये, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग दुद सह चितार, जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे अजान, कौन बस्तवाई तेरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माए, नानक पद से तीकर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तजब मान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद केप संता संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल, तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दरगा सोए, एहो वापार विरला वापार, नानक ताके सद बलिहार, चरण साध के तो तुय पियो, अर प्रसाद को अपना जियो, साध की धूर करो इशनान, साध उपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए, अनक बिगन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गही संत दर आया सर्ब सुख नानक तह पाया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवत आधार सर्ब निदान जाकी दृष्टि माए प्रभले के का लेना पाए सब किच तिसका ओ करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब दे ऊच निर्मले करनी कर कृपा दिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तै लोए जाके हृदय एको होए सच करणी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचाकार सच वरत साचा पसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किच त्रै गुण ते प्रभ पिन तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी अबनासी प्रभ मन मै राख मानुक की तू प्रीत त्याग तिस्ते परे नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एहन राओ मनसा पूर्ण सरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाके सर्ब थोक सुनिए करता कै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपी सर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला के मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्या वैसे ते गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिर आवे जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेकर एक रंग नाना बिद किनो विस्तार बनासी प्रभ बनासी एक अंकार नाना चलत करे खिन माए पूरयो पूरन सब ठाए नाना बिंद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट दिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे स्मृत भेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे अगास पताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संगुदरे सुन श्रवन कर कृपा दिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माए समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाय विश्वास सत नारंग गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कर दे प्रवेश सत निरत बुझे जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत दिस की श्रेष्ठ सो करने हार वरना बूझ करत विचार करते की मितना जाने किया नानक जो तिस भावै सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंगराज जन रहै गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुखटन हार जा कै संगत रह संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो से पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेकन हार नाम सत सत्यावन हार आप सत सत सब धारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जा सुनता बुजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करन करावन तिन मूल पछान्या जा कर दे विश्वास प्रभु आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै तिन रपौ हे बसाना जिस दे उपजिया तिस मैं समाना बस्त मायले बस्त गडाई ताको पिन ना कहना जाई बूजे बुजनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धार है नानक सो सेवक सास सास मारे अपने जन का पर्दा टाके अपने सेवक की सर पर राके अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मित कोई न लाके प्रभ के सेवक को न पहुंचे प्रभ के सेवक उसते उचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक द दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल राख है पसम करे लश्कर कोट लाख है जिसका सासना काढ़ते आप ताँ को राखत दे कर हाथ मानस जतन करत बो पात तिस्ते करतब बिरथे जात मारे न राखे वर ना कोई सरब जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभु अलक बिनाणी बारंग बार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किच अवर नहीं दृष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जेवा दिन रात प्रभ अपने जन की निदात करे भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने स्यों रह समाए जो आओ वसो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोक का दाता तिसकी शरण सर्ब सुख पावे तिसके दर्श सब पाप मिटावे अवर से आनप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जानना हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सत पुरख जिन जानिया सत गुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सत गुर सिक्की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुरमत मलहिर है गुर बचनी हर नाम उचरै सत गुर सिक्के बंधन काटे गुर का सिख बेकार ते हटे सत गुर सिक्को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी है सत गुर सिक्का हलत पलत सवार है नानक सत गुर सिक्को जी नाल समार है गुर के ग्रह सेवक जो रहै गुर की आग्या मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सत गुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए नह कामी तिस को होत परापत स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर दिस हृदय हरनाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता अट पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म है जन जन मैं पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ परम सह सियाण पलिया न जाइए नानक ऐसा गुरबड़ पागी पाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगा गवे सुनकर बचन करन गाने मन संतोख आत्म पतिया ने पूरा गुर अख्यो जा कामतर अमृत दृष्ट पेकै होए संत गुण बेमत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिस लय मिलाए जह बाए कुस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोलना पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने ना पाई अनक भगत बंदन नित करे चरण कमल हृदय सिमरै सत बलिहारी सत गुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एह रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जहां कै मन प्रगटे गुणताज आठ पैर हर का नाम ले सच उपदे सेवक को दे मोह माया कै संग न लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक परम मोह दुख तै ते नासे तप्त माए ठांड वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे उदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पाओ चुका निरपा हुए बसे सगल ब्याद मन तीखे नसे जिसका साथ तिन कृपा धारी सा संग जपना मुरारी तित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियोई कला धार जिन सगली मोई अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत वापे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भये प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कल

0: को नर को स्वर्ग मंचावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै भार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान आपन खेल आप कर दे कह खेल संकोचै तो नानक एक जाप गे तो भगत तह आप जा पसरै पसार संत प्रताप
1: पाका आपे तिन की शोभान हो बने आपे कौता करना जो जा फिर स्पोकन जोग जिस भावित से अपन ना लावे जिस भावित स्किन खिलावे बेशुमार यथा यगण ते तुले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तन हार नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपति आप कथे आप सुनने हार आपे एका विस्तार जात सभाविता सृष्टि उपाय अपने पाने लय समाये तुम ते पेन नहीं किशोय अपन सूत सब जगत परोय जा को प्रभ जीवा बजाय सच नाम सोए जन पाए सुसम दर्शी तत् कबेता नानक सुगल श्री टका जेता जी जंतर सब ताके हाथ दीन दयाल नाथ को नाश राखे से कोई न मारे सो मुआ समा बिसारे तिस्ता जवर कहाँ को जाए सबसे रेख निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाँ दे अंतर बाहर जानो साध गुण दान बेअंत पार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर हो वत कृपाल अपने कर्तव्य

एका करो धारे अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण काए सुवाओ आठ पैर प्रपे खोने राम मिटिए ज्ञान मन से अंधेरा सोने उपदेश दे बसावो मान छे नानक बल पावो हलत पल दे लियो सुवा राम नाम अंतरि उर तार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसे ते साच परिखिया मन तन नाम जपोल बिलाए दुख दर्द मन ते पौजाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह ने बैठे तुम्हारी ये काटे कर को मन माए नानक बोर न आवे जाए तस्ते दूर कहा को जाए उबरे रखण हार ते आए निरपौ जपे सगल पौ मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभु राखे सनाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाय मिटे अहंकार ते जनको कोई न पहुंचन हार श्री ऊपर ठाडा गुरु सूर नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तान सेवा सेवक प्रवान अंतर जामे पुरख प्रधान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पै अमरा पद पाया सात संग नानक कर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटे नानक मन प्रगाश अष्टपति संत संग अंतर प्रभु डिठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समग्री एक कसघट माहे अनक रंग नाना दृष्टाए नवन दे मत प्रभु का नाम देहि मैं सका विश्राम शोन समाधन तैनात कह न जय चरज विस्माद तेन देखिया आज से आप दिखाए नानक ते जन सोजी पाए सो अंतर सो बारे नंद कड़कड़ व्याप रे भगवंत तरण माए आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम पौन पणि बसंतर माए चार कुंड दद जे समाए तेस्ते पेन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण स्मृत में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल नक बहुं डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाइये गुण मोल सर्व ज्योत में जाकी जो तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तन में विश्वास संत जना का बेखण सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संगरचन जिन जाता ये रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हो सो ही सुख माने करण करावन हार प्रभु जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख समोही आप सत किया सब सात तस प्रभु ते सगली उत्पात ते सभावे ता करे विस्तार जिस भावे ता एक अंकार अनकला लखी न जाए जिस भावे सले मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आपे आप भरपूर अंतर गज से आप जनाए नानक ते जने आप बुझाए सर्व पूते आप वरतारा सर्व नैने आपे कन्हारा सगल समग्री जा का तनाया अपन जासे आप ही सुनाया अवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सब कह माध लिपतो रहे जो किस कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए इसते होए सुना ही बुरा और कहो किने कश करम आप ला कर तू त्यतने की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत अपन संग राय ताकि गातमित कहीं ना जाए दूसर होए तो सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक जान जो जाने तिसदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभु सोए ओतनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त सिर दे भगवंत तन तन तन जने आया जिस पर साथ सब जगत तराया जन आवन का ए सुहाओ जन के संग चित आवे नाओ आम मुक्त मुक्त करे संसार नानक तस जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभे आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदे पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास स्मरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आसन त्या गोतरंग संत जना की दूर मन मांगे आप छोड़ बेनती करो सात संग अगन सागर तरो
हर तन के पर लियो भंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार, खेम कुशल सहजयानंद।

सत्संग पच परमानंद नरक निवारियो दारु जियो गुण को बिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जा के रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार। उत्तम सलोक साध के वचन मलिक लाल अर्थन संत कमावत होते उधारे आप तरे लोक का निस्तार सफल जीवन सफलता का सांग जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द ना हदवाजे सुन सुन नंद करे प्रभ का जय प्रगटे गोपाल महंत के माथे नान कुदरे तिन कै साते शरण जोग सुन शरण आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर पे स्वरे न अमृत नाम साध संग लैण सो प्रसन्न पे गुरुदेव पूर्ण हो सेवक की सेव आल जंजाल विकार तेरे ते राम नाम सुन रसना कहते। कार प्रसाद दया प्रभु तार नानक ने भी के हमारी प्रभु की उस्त करो संत में सावधान ने का कर चीत सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोहोत निधान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रकट सब लोए सब ते उच पाए स्थान भोर न होवे आवण जान हर तन काट चले जन सोए नानक से प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्त मिशनान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मात सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता समुद्र सी एक दृष्टिता ए फल ते जन के मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने ए निधान चुपे मन कोए सब जुग में ताकी गात होए। गुण गोबिंद नाम तन बाणी समृत शास्त्र वेद बखाने सकल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत के मन विश्राम कोटे परात साध संग मटे संत कृपा ते जमते छुटे। जा के मस्त करम प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत जने आवे हर प्रभु चीत। जन्म मरण का दुख निवार है दुलभ दे तत्काल उधार है निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माय समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक वे गुण नाम सुखमणि सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक वे गुण नाम सुखमणि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा नंद को अंकार सतगुरु प्रसाद नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया रागर तन परिवार परिया शब्द गावण आईया शब्दोता गावो हरे केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सुधारो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सबना गल्ला सम्राट स्वामी सोके मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सुधारो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिफत सला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसे आवाज शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार ओ साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसे आ जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटाओ जिस दियां ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतोष शब्द रूपे आरो साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द तित कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दवस कीते काल कंट कुमारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे कहे नानक ता सुख होवा तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल दुख रोग संताप उतरे सुने सची संत साजन पे सरसे पूरे गुरते सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रया पर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रया पर बिनवंत नानक गुर चरण लागे
वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तों ठाकुर।

साचा साहिब सद मेहरवान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होए सर्ब कल्याण रहाओ जियो पाए पिंड जिन सजया दिता पहनन खान

जियो पाए पिंड जिन सजया दिता पहनण खाण अपने दास के आप पैज राखे नानक सद कुर्बान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों वडभागे हाँ जिथे आप जिया ने सेवक परिवार भाई परमिंदरजीत सिंह बीबी करणदीप कौर बैणीपाल परिवार वालों बच्ची बाणी कौर ते बच्ची लाही कौर बैणीपाल ते समूह परिवार की चढ़दी कला नूं मुख रखदे आं श्री सुखमणी साहब जी की पावन बाणी के पाठ आरंभ करवाए गए सन। अकाल पुरख वाहगुरु जी की अपार बख्शिश होई है। निर्विघनता सहित समाप्ति उपरंत परिवार की बच्चों की चढ़दी कला की अरदास आप संगत ने शमूलियत की है। इस मौके पर सतगुरु ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित श्रवण किए हैं। सेवक परिवार वालों आई हुई समूह संगत का तह दिल तो धन्यवाद है जिन्होंने इस मौके पर पहुँच के परिवार का माण वधाया है। आई हुई समूह संगत का परिवार वालों धन्यवाद है। परिवार वालों आईया हुई समूह संगत वास्ते गुरु के लंगर तैयार करवाए गए ने। आप संगत ने कुछ समा दीवान हाल में बैठ के गुरबाणी कीर्तन श्रवण करन तो उपरंत गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जिन गुर चरणी चित लाया, फिर पायड़ा बालड़िए अंधन सहजे माती राम। गुरमती मन आनंद पया, तित तन मैल नराती राम। तित तन मैल नराती, हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए। आन दिन रावे हर प्रभ अपना, विचों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया, अपने प्रीतम राती। नानक नाम मिले वड्याई, प्रभ रावे रंग राती।

प्रीतमा मोह लया मन मेरा पाया कर्म विधाता। सतगुर सेव सदा सुख पाया हर वसिया मन मुरारे। नानक मेल लई गुर अपने गुर कै शब्द सवारे। सतगुर सेव सदा सुख पाया हर वसिया मन मुरारे। नानक मेल लई गुर अपने गुर कै शब्द सवारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला तीजा। जे लोड़ है वर बालड़ी जे तां गुर चरणी चित लाए राम। सदा होवें सोहागणी हर जियो मरे न जाए राम। धन वाहिगुरु साहिब जी, धन वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पहला। जप तप संजम साधिये तीर्थ कीचे वास। पुन दान चंगियाईया बिन साचे क्या तास। जेहा राधे तेहा लुणै बिन गुण जन्म विनास। मुंधे गुण दासी सुख होए अवगुण त्याग समाइए गुरमत पूरा सोए रहाओ। वेण रासी वापारिया तके कुंडा चार। मूल ना बुझे अपना वस्त रही घर बार। वेण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ियार। लाहा एह निसनौतना परखे रतन विचार। वस्त लह कार्य अपने चले कार्य सार। वन जारिया स्यों वन जकार गुरमुख ब्रह्म विचार। संतां संगत पाई है जे मेले मेलनहार। मिलिया होए न विछुड़े जिसे अंतर ज्योति अपार। सच्चा आसन सच रह सच्चा प्रेम प्यार। जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सुथाए। सच्चे से तीरतियां सच्चो पल्ले पाए। तेरे पवन सो प्रभ जानिए सचो सच नाए। सा धन खरी सुहावने जिन पिर जाता संग। महली महल बुलाइए सो पिर रावे रंग। सच सुहागण सा भली पिर मोहि गुण संग। भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ। बन मैं भूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं।

ना ही ठाऊं। बिन सतगुर ना हो ना पाइये, बिन नाम है क्या स्वाओ, आए गया पछतावना जो सुन्य कर काऊं। बिन नावै दुख देहुरी ज्यों कलर की पीत, तब लग महल ना पाइये, जब लग साच ना जीत, शब्द रपे कर पाइये निर्बाणी पद नीत। हाँ गुर पूछो अपने, गुर पुष्कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसै हों मैं दुख जल जाओ। सहजे हुए मिला वड़ा, साचे साच मिलाओ, शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर रखें और तार। सो क्यों मन विसारिय, सब जियां का आधार, शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे न दूजी वार। शब्द ही ते पाइये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे वारो वार।

कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए हमें करे न कोय। श्री राग महला पहला बिन फिर धन छिंगारिए जोबन बाद खुआर। ना माने सुख से जड़ी बिन फिर बाद श्रृंगार। दुख कणो दुहागणे ना कर से जपतार। मान रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाइय शब्द मिले रंग होए रहाउ। गुर सेवा सुख पाइय हर वार सहज श्रृंगार। सच माने पिर से जड़ी गूड़ा हित प्यार। गुरमुख जान सिंजानिए गुर मेली गुण चार। सच मिलोवर कामणे फिर मोही रंग लाए मंत्र सच बिकसिया कीमत कहण न जाए। हर बार कर सुहागणी निर्मल सच नाए मन में मनुआ जे मिले ता पर रावे नार। एकत तग राल मिले गल मोतियन का हार। संत सभा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजय खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाण रब रह ना तिस काल संताए।

आवे जाए पवाइये पै कृत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मिटिये लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम ना छुटिये गुरमत मिले मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हमें ममता जल बड़ो लोभ जलो अभिमान नानक शब्द विचारिये पाइये गुणे निधान श्री राग महला पहला। रे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछोड़िए लहरी नाल पछाड़िए पे बिकसे असले जल में जी उपाय कै बिन जल मरण तिने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुखी अंतर रव रहे आ बख्शी भगत पंडार रहा। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अधिको त्यों सोकणो मंतन शांत शरीर बिन जलकड़ी ना जी वही प्रभ जाने अपीर। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रिक में सार पार थाल हरियावले एक बूंद न पवई के करम मिले सो पाइये कृत पया सिर दे

ठगिया मुठा जाए। बाबा माया परम पुलाए, परम पुली डोहागणे ना प्रियंक समाए रहाऊ।

करम मुट्ठी बिरलाए। विछड़िया गुरमिल सी हर रस नाम प्यार, साच सहज शुभा कणे हर गुण नामे आधार।

ज्यों पावे त्यों रख तू, मैं तुझ बिन कवन पतार। अखर पढ़ पढ़ भुलिए, भेखी बहुत विमान। तीर्थ नाता क्या करे, मन में मैल गुमान। गुर बिन किन समझाइए, मन राजा सुल्तान। प्रेम पदार्थ पाइये, गुरमुख तत्व विचार। सत ने आप गवाया, गुर के शब्द श्रृंगार। घर ही सो पिर पाया, गुर के हित अपार। गुर की सेवा चाकरी, मन निर्मल सुख होए। गुर का शब्द मन वसिया, होमे विचों खोए। नाम पदार्थ पाया, लाभ सदा मन होए। करम मिले ता पाइये, अपना ले आ जाए। गुर की चरणी लाग रो, विचों आप गवाए। सच्चे से तीर्थ या सचो पल ले पाए।

मैं तो जबिन अवर ना पावई, तू पावे सुख होए रहाऊ। नाम सालाही रंग स्यों, गुर कै शब्द संतोख। जो दिसे सो चलसी, कूड़ा मोह न वेख। वाट वटाऊ आया, निचल दा साथ देख। आखने आखे के तड़े, गुरबिन बूझ न होए। नाम वडाई जे मिले, सच रपे पत होए। जो

मान रे साची खसमर जाए जनता मनसा श्रृंगारे आ तस्य तिल बुलाए रहाउ तान बैसंतर हो मियाँ करती तोल कटाए तन मन समदा जे करी अनदनी अगण जलाए हर नामे तोल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए अर्ध शरीर कटाइए सिर करवात तराए तन है मंचल गाड़िए पी मन ते रोग न जाए हर नामे तोल न पुजई सब डिठी ठोक बजाए कंचन के कोट दत्त करी बोहै वर गै वरदान पूम दान गुआ कणे पी अंतर गर्भ गुमान राम नाम मन बिद्या गुर दिया सच दान।

सब कोई ऊंचा आखिए, नीच ना दिसे कोई। एक ने भांडे सच है, एक चानन ते लोए। कर्म मिले सच पाइए, तुर बख्श ना मिटे कोई। साध मिले साधु जने, संतोख वसै गुर पाए। अकथ कथा विचारिये, जे सत गुर माए समाए। पीयम पी अमृत संतोखिया, दरगाह पैंदा जाए। घट घट वाजे किंगुरी, अन दिन शब्द सुभाए। विरले को सो जी पई, गुरमुख मन समझाए। नानक नाम न विसरे, छूटे शब्द कमाए। श्री राग महला पहला। चिते दिसें तौलर, बगे बंक द्वार। कर मन खुशी उसारिया, दूजे हित प्यार। अंदर खाली प्रेम बिन, टह टेरी तनसार। भाई रे तन तन साथ ना होए, राम नाम तन निर्मलो। गुरदात करे प्रभु सोए रहाओ।

चलना चलना जे करी जाना चलन हार, जो आया सो चलसी अमर सो गुर करतार। पी सच्चा सा राहना सच्चे थान प्यार, दरकर मेला सोहने पक्के कोट हजार। हस्ती कोड़े पखरे लश्कर लख अपार, किसी नाल ना चलिया कप का मोए असार। सुना रूपा संचिय माल जाल जंजाल, सब जग में दो ही फेरिय बिन नाम सिरकाल। पिंड पड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हाल, पुत्ता देख विकसिय नारी से जपतार। चोआ चंदन लाइये कापड़ रूप शिंगार, खेऊ खेर लाइये छोड़ चले करबार।

मन मुख ना विसारिया जोंडव दद्धा कान हमे कर कर जायसी जो आया जग माहे सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुआए गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाह नानक तरिये सच नाम सिर शाह पातशाह मैं हर नाम न विसरे हर नाम रतन वेसाह मन मुख पौजल पच मुए।

ने चर लोक दुनिया कैस मुकामे कर सदक करनी खर्च बांधो ला करो ना में रहो। जोगी ता आसन कर बह मुल्ला बह मुकाम पंडित बखाने पोथियां सिद्ध बह देव स्थान। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन शेख पीर सलार दरकूच कूचा कर गए अवरे पे चलन हार। सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुंच। शब्दा माए वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती चाल थल में जल सोए। अल्लाह अलख अगम कादर करण हार करीम सब दुनी आवण जावणी मुकाम एक रहीम। मुकाम तिसनु आखिए जिस सना होवी लेख असमान तरती चलसी मुकाम उही एक।

कमल लाती जा कर पर लाए अष्टपदिया। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, गुरमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुर भगत न होए।

गुर शब्द दृढ़ावै रंग स्यों बिन कर पालिया न जाए। जे सोय अमृत नी रिये पी बिख फल लागे ताए। से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का पाणा कमावंदे बिखो मैं तज विकार। मन हट किते उपाय ना छूटिए सिमरत शास्त्र सुधो जाए। मिल संगत साधु उभरे गुर का शब्द कमाए। हर का नाम निधान है जिसे अंत न पारा वार। गुरमुख से ही सोंदे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है दूजा और न कोए। गुर प्रसादी पाइये करम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा।

निज कर वसा पाया, हर हर नाम समाए, मन रे गुर की कार कमाए, गुर के पाणे जे चले, तां दिन राचे हर नाय रहाऊ।

परम पुलाय। गुरमति हर सदा पाया, रसना हर रास समाये, माया मोह चुकाया, गुरमति सह सुभाय। बिन शब्द जग दुखिया फिरे, मन मुखा नो गई खाए, शब्दे नाम ते आइए, शब्दे सच समाए। माया भूले सिद्ध फिरे, समाध ना लगे सुभाए, तीने लोह व्याप्त है, अधक रही लपटाए। बिन गुर मुक्त न पाइये, ना दबदा माया जाए, माया किसनो आखिए, क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख जियो बद है, हमें कर्म कमाए।

शब्दे हमें मारिये माया का भ्रम जाए, नाम पदार्थ पाइये गुरमुख से सुभाए। बिन गुर गुण न जपने, बिन गुण भक्त ना होए, भगत विशल हर मन वसिया, सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साला ये करम प्राप्त होए, सिर राग माला तीजा।

लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ भविया ते तो लवेया बहु पेख किया देही दुख दिया सोहबे जी अपना किया नना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा भाया वस्त्र ना पहरे अहनस करे मून विगुता क्यों जागे गुरबन सूता पग पे ताना अपना किया कमाना लमल खाई सरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निद आवे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा

दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृत सरजी दे इशनान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मादा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे माण नितानियां दे तान नियोटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरू आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है गरीब नवाज पातशाह जीओ आप जी दे हजूर अमृत वेले नूं मुख रखदिआं दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ तो उपरंत शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन आनंद साहिब छे पौड़ियां दी अरदास पातशाह जीओ। इन्ने अरसे विच आप जी दे बच्चियां पासों बाणी पढ़दिआं सुणदिआं पातशाह होईआं बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा अगाह तो समत बख्शिश करनी अज पातशाह जीओ बच्चियां दीआं नवां क्लासां दा सैशन आरंभ होया है जिस नूं चलदिआं पातशाह जीओ बच्चियां ने आप जी दे पावन दरबार दीआं हाजरियां भरियां आप जी ने कृपा करनी बच्चियां दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखणा दुखां कलेशां दरिद्रां विघनां दे नाश सुखां दे प्रकाश चढ़दियां कला बख्शिश करनियां। समूह संगत दी कीती होई अरदास बेनती दर ते प्रवान करनी कदम कदम लेखे विच लाउणा आप जी दियां बख्शियां दातां दे विच्चों तिल फुल पेटावां दर ते प्रवान करनियां दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दान दी दात अमृत वेले दा जागना नितनेम दी दात बख्शिश करनी मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां देसां परदेसां विच विचरदिआं बच्चियां दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखणा बच्चियां नूं माता पिता दे आग्याकार उच्च विद्या दी दात नेक मार्ग उत्ते चलण दी प्रेरणा बख्शिश करनी आरंभे हुए कार्य निर्विघ्नता सहित संपूर्ण करने पातशाह जीओ काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दीआं दातां बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना पातशाह जीओ बच्चियां दियां नवियां क्लासां दे आगमन नूं मुख रखदिआं होइआं पातशाह जी आप जी दी पावन हजूरी दे अंदर समूह साध संगत जी वल्लों कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होइआ प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शिश करनी कृपा करो पावन हुकम दी दात बख्श के समूह संगत नूं निहाल करो अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबादे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पई अकाल की तबै चलाय सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की।

तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारिक तुमरे तारे जिहवा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी

को बनजारू राम को मेरा टांडा लाद्या जाए रे रहाओ। हां बनजारू राम को सहज करूं व्यापार

0: अनुहा नाम तेरे संग सहाई।
1: जय महाप्यान दूत जमदल है, तह केवल नाम संग तेरे चले।
0: जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिनवाए उधारी।
1: खनक पुण्य चरण करत तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे।
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे।
1: सर्व श्रेष्ठ राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया।
0: लाख करोरी बंध न परे, हर का नाम जपत निस्तर है।
1: अनक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत आकावे।
0: जे मार गे जात केला, तै हर नाम संग हो सुहेला।
1: ऐसा नाम सदा त्याइए, नानक गुरमुख परमगत पाइए।
0: छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत है पार पराही।
1: अनक बिघन जाय आए सुंगारे, हर का नाम तत्काल उधारे।
0: अनक जौन जन में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम।
1: ओम मेला मल कबू न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे।
0: ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध के संग।
1: जे मार के गले जाए न कोसा, हर का नाम।

0: मनते कबू न बिख्या टरे
1: जल तो वे बोदे नीत शुद्ध कहा होई काची पीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच
1: बहु श्यांग जम का पो व्याप अनक जतन का तृष्ण ना तापे
0: देख नेक अगन नहीं बुझे कोट पाव दर गए नहीं सिजे
1: छूटस नाही उब प्याल मोह व्यापे माया जाल
0: अवर कर तू सगली जमडाने गोविंद भजन बिंतल नहीं माने
1: कर का नाम जब तक दुख जाए नानक बोले सह सुभाए
0: चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा ला।

0: सिगारिया गर्भगन में जने उभारिया।
1: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद
0: यद पैया ऊपर साक्षण मुख्य प्याओ बैठ को देन
1: ये निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श ले तो नानक सीजे
0: जे प्रसाद तार सुख बसे सोत प्राप्त मीत बनता संग हसे
1: जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन भाव कुमला
0: जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा
1: दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग।

0: संग रचे साच छोड़ छूट संग मचे
1: जो छड़ना सो असर कर माने जो हवन सो दूर पराने
0: छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे
1: चंदन ले पोतारे तो ए गर्त प्रीत पसम संग होए।

0: मिथ्या तान तान कुटुंब सवाया, मिथ्या हो मैं ममता माया,
1: मिथ्या राजवन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल,
0: मिथ्या राख हस्ते अशभस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता,
1: मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर कर तो गुमान,
0: अस्तर पंत सादगी सरन, नानक जप जप जीवे हर के चरण,
1: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने।

0: जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिष्ठा कर को रख मन माए।
1: जे प्रसाद सुगंध धन लाभ है तिसको सिमरत परम गत पावे।
0: जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर।
1: जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना।
0: जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्यावन जोग।
1: प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्या का तवर लुभावे।
0: जे प्रसाद सुख सेज जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय।
1: जय प्रसाद तो सबको माने मुक्ता को जस रसन बखाने।

0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
1: ब्रह्म ज्ञानी।

0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा।
1: ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला।
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उगार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार।
1: ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह

0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब बलहाथ।
0: ब्रह्म ज्ञानी

0: करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा
1: गुर प्रसाद क्या पर हरे मन की वासना मानते करे
0: इंद्रिय जित पंच दोख ते रहत नानक कोड मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिसु परसो प्रसन्न विषय की माया ते हुए भिन्न
0: कर्म करत हो वे न कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काऊ फल की इच्छा ने बाचे केवल भक्त कीर्तन संग राचे
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप जड़े अवरा नाम जपावे नानको बेसरो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग सगल ते आगे दुष्ट का संग
1: मन ते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मर खोवे तिस भगवती कीमत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत मन ता अर्पे विसर प्रीत
0: हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन पर बोधे राम नाम हातमे सोधे
0: राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे
0: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल सुख मैं जाने स्थूल
1: जो वरना को देव प्रदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चो वरना मैं जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए साथ संग पावे जन कोए
0: कर कृपा अंतर और तारे पास प्रेत मुग्ध पाथर को तारे
1: सर्व लोका औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: काहू जोगत के ते ना पाये धर्म नानक तैस मिले जिस लिखिया तोर कर्म
1: जिसके मन पर ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास
0: आत्म राम तस नदनी आया दास संतन पाए तन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान सो दास दर के परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे
1: सगल संग आत्म उदास ऐसे जुगत नानक रामदास
0: प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हरक तैसा उसोग सदा आनंद नहीं वियोग
0: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमर तैसी बेखाटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान
0: जो भरताए साई जोगत नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ जे जित कर राखे

0: कई कोट होए पुजारी, कई कोट चार व्यवहारी,
1: कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट मन में उदासी,
0: कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब का विचार,
0: कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते का अंत न पाव है,
1: कई कोट पे अभिमानी, कई कोट आनंद ज्ञानी,
0: कई कोट कृपण कठोर, कई कोट व्यघातम निकोर,
1: कई कोट पर धर्म कोई रहे, कई कोट पर दुख ना करे,
0: कई कोट माया शरम माहे, कई कोट पर देश पर माहे,
1: जितने लाभो तेते लगना, नानक करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिख निप जाए,
0: कई कोट पवन पानी वह संतर, कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट सिय सुन खतर, कई कोट देव दान इंद्र से छतर,
0: सगल समग्री अपने सूत तार, नानक जस जस पावे तस तस नस्तार,
1: कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वे प्राण सिमरत अरसास,
0: कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट किए चिर जीव, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीव,
0: कई कोट जाक के नर पिचा पिसाच, कई कोट भूत पेर सूकर मेर गाच,
1: साते नेरे सबु से दूर, नानक आप अलपत्रया पर,
0: कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म जीव मरे, कई कोट भोजनी फिरे,
0: कई कोट बैठ ही खाहे, कई कोट काल थक पाहे,
1: कई कोट किए तरवंत, कई कोट माया में चिंत,
0: जह जय पाणा तह तह राखे, नानक सब कुछ प्रभ कह हाथे,
1: कई कोट पे वैरागी, राम नाम सतन लिव लागी,
0: कई कोट प्रभ को खो जनते, आतो मैं पार बम लहनते,
1: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलो प्रभ अभिनाश,
0: कई कोट मांगे

0: किस पारा वारा।
1: हुक्मे तार धार रहावे, हुक्मे उपजय हुक्म समावे।
0: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार।
1: कर कर देखे अपनी बड़ियाई, नानक सामे रह समाई।
0: प्रापावे मन गत पावे, प्रापावे ता पथ तरावे।
1: प्रापावे बिन शास्त्र राखे, प्रापावे ता हर गुण पाखे।
0: प्रापावे ता पथ उधारे, आप करे आपन विचारे।
1: दुहा सिरिया का आप स्वामी, खेले विकसय अंतर जमी।
0: जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर नावे।
1: कहो मानुख ते क्या हो आवे, जो तिस पावे सोई करावे।
0: इसके हाथ हो ता सब किछ ले, जो तिस पावे सोई करे।
1: अन जान दुविख्या मैं रचे, जे जानते अपने आप बचे।
0: धर्मे भूला दे दस्तावे, निमुख माए चार कुंट पर आवे।
1: कार कृपा जस अपनी भक्त दे, नानक ते जन नाम मिले।
0: खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज।
1: जाका दृश्य कशुना आवेश, ते सत्काल दह दस प्रटावे।
0: जाको अपनी करे बक्सीस, ताका लेखन करे जगदीश। जियो अपनी बनते आप रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनते आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। नाही हाथ करन करावन सर को नाथ।
1: करावन सर्व को आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावे सोई फंथियो।
0: कबू ऊंच नीच में बसे, कबू सोख हर खरंग हसे।
1: कबू नंद चंद व्यवहार, कबू ऊब आकाश प्याल।
0: कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक आम मिलावन हार।
1: कबू नृत्य करे बपात, कबू सोए रहे दिन रात।
0: कबू महा क्रोध विकराल, कबू सर्व की ओ तरवाल।
1: कबू होए बह बड़ राजा, कबू पे खारी नीच का साजा।
0: कबू आपकी रत में आवे, कबू पला पला कहावे।
1: जो प्रव राखे तभी रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे।
0: कबू होए पंडित करे बख्यान, कबू मोन तारी लावे ध्यान।
1: कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सद साधक मो ज्ञान।
0: कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन पर मैं पर मिया।
1: नाना रूप जस वांगी दिखावे, जो प्रभावे तिवे नचावे।
0: जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा वर न कोए।
1: कबू सा संग ते हो पावे, उस स्थान ते भोर न आवे।
0: अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश।
1: मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म।

0: सदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान
1: जो जाने में जो बनवंत सो बिष्टा का जंत
0: आपस को कर्म बंत कहा।

0: उसते पैन कहो कश होए थान थनंतरे कै सोए
1: अपने चलते आप करने हार कत करे रंग पार
0: मान मैं आप मन अपने माहे नान कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी
0: सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना
1: पला पला पला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवन बखियाणी।

0: राष्ट्रपति संत के दुखन हर जा कटे, संत के दुखन जम तेने छुटे,
1: संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन,
1: संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन तान प्रस्त होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भीतर,
1: संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रग जोन करमाए,
1: संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को चले,
0: संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच न चाए,
1: संत दुखी का थाओ को नाए, नानक संत पावे ता ओए बिगत पाए,
0: संत का निंदक महात ताए, संत का निंदक खन टिक न पाए,
1: संत का निंदक महात यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुख यार दीन,
1: संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग,
0: संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख,
1: संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का निमित,
0: संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे,
1: संत का दुखी मांकारी, संत का दुखी सदा विकारी,
0: संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे,
1: संत के दुखी को नाही ठाउ, नानक संत पावे ता ले मिलाए,
0: संत का दुखी अध बीते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुंचे,
1: संत के दुखी को जान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यो साजा सांस बिना मृतक की लोथा,
1: संत के दुखी की गल कुछ नाही, अपन बीजा पे ही खाए,
0: संत के दुखी को अपन न राखन हार, नानक संत पावे ता ले उभार,
1: संत का दुखी बिलाए, ज्यो जल भी हुन मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा ने राज, ज्यो पाव की दने त्रप,
1: संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तल खेत माए देला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
1: नित निंद का तरी पया, नाम जोत स्पावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा से कहिए, संत का दुखी ना मरे ना जवाइए,
0: संत के दुखी की पूजे न आशा, संत का दुखी उठ चले।

0: सोची जाने।
1: नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तने निरंजन जानिया।
0: गुर प्रसाद अपने आप सुझे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे।
1: साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत।
0: आंदन कीर्तन केवल ख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण।
1: एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा।
0: जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख।
1: जिसको हर ब्रह्मन चित्यावे, सो संत सहेला नहीं डुलावे।
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे।
1: जैसा सत ऐसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया।
0: सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बुझिया।
1: जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल।
0: किस जन्मे न किस मरे, आपन चलते आप ही करे।
1: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ।
0: आपे आप सगल में आप, अनक जुग पर थाप थाप।
1: अविनाशी ना ही किस खंड, तारण तार रे हो ब्रह्मंड।
0: हरख पेर पर प्रताप, आप जो पाए तनानक जाप।
1: जैन पर जाता सुशोभावंत, सगल संसार उदरे तन।

0: सती कर जाए।
1: जिस बखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया।
0: जब मान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल।
1: लाद खेब संत संग चाल अवर त्याग विख्या जंजाल।
0: तन तन कहे सब कोए मुखो जलर दर गए सोए।
1: एहो बापार बेला बापारे नानक ताके सद बलहारे।
0: चरण साध के तोय तोय पियो अल्प साध को अपना जियो।
1: साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान।
0: साध से वावड पागी पाइए साध संगर कीर्तन गाइए।
1: अनक विघ्न ते साधु रखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे।

0: सब कुछ तस्काओ करने जोग तस्व दूसर हुआ न होग
1: जन सदा सदा दिन रहनी सबते उच निर्मले करनी
0: कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रतीत ते जन आवे हर प्रतीत
0: भगत भगत सुनिए तह लोए जाके हृदय कोए
1: सच करनी सता की रहत सच दे सतमुख कहत
0: साची दृष्टि साचा आकार सच वर्ते साचा

0: मैं जोगी, तप मैं तपी सिर गृहस्थ मैं भोगी।
1: सुख पाया नानक तस्पर का कने अंत ना पाया।
0: जाकी लीला कीमत ना है सग

0: नाना बेदकर बंद बनाई अपनी कीमत आपे पाई।
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नानक नाओ।
0: नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन सर्वन
0: नाम के तहकार कृपा जस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सब जानगत पाए।
1: रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सा माहे समानी
1: सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत
0: सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सा फली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई।
0: सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बूझे जे कोए नाम जपता की गत होए
0: आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत
1: जिसकी से सो करने हार अवर न बूझ करत विचार
0: करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्त।

0: अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत मत कोई न रखे।
1: प्राव के सेवक को कौन पहुँचे, प्राव के सेवक ऊँचे ऊँचे।
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दे दुष प्रगटाया।
1: नेकी कीरी में कल रखे पसम करे लश्कर कोट लखे।
0: इसका शासन काटते आप ताको राखर दे कर हाथ।

0: काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्राप अलख बडाणी।
1: बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत मन तंत्र पिए।
0: नाम तंजन गुरमुख पाया, तिसकछ अवर नाही।

0: प्रभु अपने का हुक्म पहचाने।
1: जिसकी महिमा कौन बखानो, जिसका गुण कै एक न जानो।
0: आठ पैर बसे हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे।
1: मन मेरे तन की ओट ले, मन तन अपना तन जन ले।
0: जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता।
1: जिसकी सर्व सर्व सुख पावे, तिसके दर्शन पाव मिटावे।
0: अवर स्यान पसग

0: कत जाने
1: कबल जाओ
0: सर्वदान जी का दाता आठ पैर पा ब्रह्म रंगराता
1: जन जन में पार ब्रह्म एक आपने कश परम
0: सह सियान पलिया न जाइये नानक ऐसा गुरबड़ भागी पाइये
1: सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरगत निर्मल रीत
0: भेट संग राम गुर रवे पार ब्रह्म की दर गे गवे
1: सुनकर भजन कर लिया काने मन संतोखा तम पत्याने
0: पूरा गुरु आखे

0: कीमत की दे ना पाई।
1: नानक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे।
0: सत बलिहारी सत गुर अपने नान जिस पर साध ऐसा प्रभ जपने।
1: रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमर सोए।
0: उस पुर का नाही कदे।

0: आधार
1: और पावसा मीत बसारो चरण कमल मैं उतारो
0: कर्ण कान सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गयो नाम हर वथ एक आस रख मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए
1: जिस तन को चार गुण उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे
0: जिस सुखो निज बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत
1: जिस बाको करे पली करनी सासो बाप जर की सरनी
0: अनेको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर औख दलाए
1: सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान
0: मन पर बोधो हर के नाए दर्द सतावते आवे ठाए
1: ताको बिगन न लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए
0: कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख

0: अंतिम ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने
1: सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग
0: परे सना सब त्याग अंतर प्रकाश अंधिल

0: नाग तुमरी सन पुरख भगवान
1: सर्व कंठ मुक्त मोह पाए एक निमखर के गुण गाए
0: अनेक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई
1: गोपोजन का प्रसंगीत रसना जपते हर नीत
0: भली सो करनी सो बा धनवंत हृदय बसे पूर्ण।

0: दर्शनी।
1: जब आकार कृष्ण दिसतेता पापन तब कहते होता,
0: जब तारी अपन सुन समात तब वैर के संक मात,
1: जब इसका बनते न जापत तब हर के सोग को किसे व्यापत,
0: जब अपने आप परम तब मोखा के सोवत परम,
1: आपन खेला वर्ती जा नान करने हार न दूजा,
0: जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुत को किसको गनी,
1: जब एक हरग में अपार तब नरक सुर को कौन अवतार,
0: जब निर्गुण पर सहस भाए तब से सत को के तठाए,
1: जब आपे आप अपनी जोत रे तब कवन निडर कवन का डरे,
0: अपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अग में अपार,
1: अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन,
0: जब पूरन करता प्रभु सोए तब जम की त्रास को के सोए,
1: जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चितर गोत

0: निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान।
1: जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल सिद्धर लगत को कीश।
0: जय जो स्वरूपी ज्योत संग समावे तय किसे भूख कवन तिपतावे।
1: कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार।
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माई बाप मित्र सत भाई।

0: आस त्यागो त्रंग संजना की टूर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो साथ संगल सागर करो
0: हर तन के पलो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार
1: कुशल सहजानंद साथ संग पंच परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत पियो
1: एक रूप जाके रंग

0: दयाल दो भजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का आधार
0: बता सलोक साध के बचन मलिक लाल ए रतन
1: सुनत कमावत होत आधार आप तरे लोके निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
1: जय शब्द नाहत बाजे सुन सुन नंद करे प्रभु काजे
0: प्रगटे गोपाल महांत के माथे नानक उदरे तिन के साथे
1: सर्ण जोग संसारनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए बैर पे सब रेन अमृत नाम साथ संग लेन
1: सो प्रसन्न पे गुरुदेव पूरन होए शिव की सेवा
0: आज जंजाल बेकार तेरे ते राम नाम सुसना कहते
1: कर प्रसाद प्रभु तारी नानक ने भी खेप हमारी
0: प्रभु की स्तुत करो संत मीत सावधाने का घर चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो तनिदान
0: सर्व इच्छाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख पर सगल होए
1: साते उच पाए स्थान बौर न होवे आवन जान
0: हर तनखा चले जन सोए ना जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान से सुतम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मद सगल

एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदे आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ

जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सज्जन सच्चा पातशाह शेर शाह दे शाह